0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। ईरान का कहना है कि वो उस वक्त तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं करेगा जब तक वाशिंगटन उसके लिए मुआवजा अदा नहीं करता, जिसे ईरान मफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार देता है। इतवार के रोज एक ईरानी मीडिया आउटलेट ने आबनाए हुरमस को दोबारा खोलने के बारे में वजीर खारजा अब्बास इराकची के रिमार्क्स के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। इराकची ने कहा कि ईरान फिलहाल अमरीका के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। उन्होंने इशारा दिया कि ईरान का ख्याल है कि जब तक मुफाहमत की याददाश्त की मुबैना खिलाफ वर्जियों का हल नहीं निकाला जाता और जब तक वाशिंगटन इन खिलाफ वर्जियों के लिए तेहरान को मुआवजा नहीं देता, मुज़ाकरात दोबारा शुरू करना मुमकिन नहीं होगा। इराकची ने यह भी बताया कि ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुरमस में एक नए समुद्री रास्ते के तयन के लिए मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आबनाए को दोबारा खोल दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस आबी गुजरगाह को दोबारा खोलना दीगर शराइत की तकमील से मशरूत है। तुर्की के वजीर खारजा का कहना है कि अंकरा रूस और यूक्रेन पर जोर दे रहा है कि वो बहिरा अस्वद के अंदर और उसके इर्द गिर्द हमलों के तनाजुर में समंदरी हिफाजत को यकीनी बनाए। हाकान फिदान ने हफ्ते के रोज सहाफियों को बताया कि पूरा बहिरा अस्वद उन इलाकों में शामिल हो गया है जहां जंग फैल चुकी है। तुर्की समंदर से मुतसिल ममालिक में से एक है। फिदान ने मजीद कहा कि रूस और यूक्रेन तमाम तजारती जहाजों पर बिला तफरीक हमला कर रहे हैं। तुर्क वजीर खारजा ने इंकशाफ किया कि अंकरा ने बहिरा अस्वद के हमले रोकने के लिए मैकेनिज्म के कयाम के बारे में मास्को और कीफ को आगाह किया है। फिदान ने दोनों फरीकों पर जोर दिया कि वो लॉजिस्टिक सहूलियात पर अपने बढ़ते हुए हमलों पर तहम्मुल का मुजाहरा करें। ये एकदम उस वक्त सामने आया जब रूसी अफवाज ने गुज़श्ता माह बहिरा अस्वद की बंदरगाह से मकई ले जाने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमला किया था जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए थे। इसी माह यूक्रेन का एक ड्रोन रूस में बहिरा अस्वद के एक पुरहजूम साहिल पर गिरा था जिससे 7 अफराद हलाक हो गए थे। इतवार के रोज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रूसी अफवाज ने बहिरा अस्वद के जनूबी इलाके ओडिशा में रिहायशी इमारतों और एक बंदरगाह पर हमला किया जिसमें 8 अफराद जख्मी हुए। आफात में मलबे तले दबे लोगों को बचाने के लिए बनाए गए रोबोट्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए हफ्ते के रोज कोबे शहर में एक मुकाबला मुनक्किद हुआ। यूनिवर्सिटियों और टेक्निकल कॉलेजेस के तलबा समेत 12 टीमों के रोबोट्स के फंक्शंस और उनकी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी को जांचा गया। मुकाबला करने वालों ने रुकावटों को दूर करने के लिए अपने रोबोट्स को एहतियात से कंट्रोल किया और किसी सानहे के मकाम से मुशावत रखने वाले 5x6 मीटर के इलाके से इंसानी शक्ल की एक गुड़िया को आहिस्तगी से निकाला। मुंतजिम कमेटी के सरबरा निमी हिरोफूमी ने कहा कि सानियात के असल मकामात और मुकाबले में इस्तेमाल होने वाले मकामात के दरमियान अब भी फर्क है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुकाबला टेक्नोलॉजी की तरक्की और अमला तैयार करने में मदद करेगा।
1: और सामिन, अब आज की अहम खबरों की चंद सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान की मौसमियाती एजेंसी के हुक्काम पीर के रोज मशरकी और मगरबी जापान के लिए एक और झुलसा देने वाले दिन की पेशगोई करते हुए लोगों से हीट स्ट्रोक से बचाव के इकदाम करने का कह रहे हैं। और नागानो प्रीफेक्चर में कीचड़ के सबब पुल टूटने से फंसे तकरीबन 400 अफराद को उस इलाके से निकाला जा रहा है। और ईरान का कहना है कि वो उस वक्त तक अमरीका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं करेगा जब तक वाशिंगटन उसके लिए मुआवजा अदा नहीं करता, जिसे ईरान मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार देता है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 11 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। भीषण उष्णकटिबंधीय तूफान चानहुम अब जापान की ओर बढ़ रहा है और मंगलवार शाम को टोक्यो सहित खांतो क्षेत्र से टकरा सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने पूर्वी और पूर्वोत्तरी जापान में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। बुधवार सुबह तक के 24 घंटों में तोहोकु क्षेत्र में अधिकतम 180 मिलीमीटर, खांतो कोशिन क्षेत्र में 150 मिलीमीटर और प्रशांत महासागर स्थित इजू द्वीपों में 100 मिलीमीटर वर्षा होने का अनुमान है। इस तूफान के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। तोहोकु और खांतो कोशिन में मंगलवार को अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूस्खलनों, निचले इलाकों में बाढ़, नदियों में उफान, तेज हवाओं और ऊंची लहरों के प्रति चेतावनी जारी की है।

एजेंसी के अनुसार बवंडर जैसी तेज हवाओं और वज्रपात की भी आशंका है। तूफान असामान्य मार्ग पर चलते हुए पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार तूफान की दिशा को देखें तो इससे खानतो और तोहोकू के तटों पर हवा की चाल असामान्य हो सकती है और अचानक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। जापान की ओर आने वाले तूफान आमतौर पर पश्चिमी हवाओं के दबाव में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए शक्तिशाली भूकंप को 2 सप्ताह बीत चुके हैं और वहां 6,000 से अधिक लोग अब भी आश्रय स्थलों में रह रहे हैं। 28 जुलाई को आए भूकंप से कुमामोतो के कुछ इलाकों में 7 की तीव्रता के झटके महसूस किए गए, जो जापान के भूकंप मापी पैमाने पर सर्वाधिक स्तर है। सोमवार तक भूकंप से 39 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी थी, जिनमें आपदा संबंधी कारणों से मारे गए लोग भी शामिल हैं। भूकंप से 22,000 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 699 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। यात्सुशिरो और उकी शहरों तथा हिकावा नगर में लगभग 34,000 घरों में जलापूर्ति अब तक ठप है। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बहाल हो जाएगी। एनएचके के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए के मंत्रिमंडल की समर्थन दर पिछले महीने की तुलना में 5 अंक गिरकर 53% हो गई है, जो पिछले साल गठन के बाद से सबसे कम है। वहीं असमर्थन दर 6 अंक बढ़कर 33% हो गई है। एनएचके ने शुक्रवार से रविवार तक टेलीफोन सर्वेक्षण किया। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के 2,925 लोगों से संपर्क किया गया, जिनमें से 1,205 ने जवाब दिया। सर्वेक्षण में 28 जुलाई को जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में आए महाभूकंप के बाद सरकारी कदमों के बारे में भी पूछा गया। 11% लोगों ने कहा कि वे सरकारी प्रतिक्रिया की बहुत सराहना करते हैं, जबकि 56% ने कहा कि वे कुछ हद तक सराहना करते हैं। 21% ने कहा कि वे प्रतिक्रिया की उतनी सराहना नहीं करते और 6% ने कहा कि वे बिल्कुल भी सराहना नहीं करते। मंत्रिमंडल ने हाल में एक सरकारी योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत अगले साल अप्रैल से 2 साल के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर की दर घटाकर 1% कर दी जाएगी। इसके अलावा निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को भत्ता भी मिलेगा, जिससे खाद्य पदार्थों पर उनके लिए कर का भार लगभग शून्य हो जाएगा। कुल मिलाकर 49% लोगों ने कहा कि वे इस नीति का समर्थन करते हैं, 39% ने कहा कि वे इसके खिलाफ हैं और 12% ने कहा कि वे नहीं बता सकते या उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। संसद ने शाही परिवार के सदस्यों की पर्याप्त संख्या बनाए रखने के लिए संशोधित शाही घराना कानून पारित कर दिया है। जब लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि संशोधन को जनता का समर्थन मिला है, तो 3% ने कहा कि इसे पर्याप्त समर्थन मिला है, जबकि 26% ने कहा कि कुछ हद तक मिला है। 41% ने कहा कि संशोधन को ज्यादा समर्थन नहीं मिला है और 23% ने कहा कि इसे बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिला है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान में निर्मित जीपीएस उपग्रह मिचिबिकी को मंगलवार सुबह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर खागोशिमा के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से मिचिबिकी संख्या 7 उपग्रह ले जाने वाला H-3 रॉकेट जापानी समयानुसार सुबह करीब 4 बजे प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट ने ऊपर जाते हुए 2 बूस्टर और पहले चरण को अपने से अलग किया। प्रक्षेपण के लगभग 29 मिनट बाद रॉकेट ने उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। मिचिबिकी उपग्रह जीपीएस की तरह पोजीशनिंग सिग्नल भेजते हैं। मिचिबिकी के 5 उपग्रह वर्तमान में जापान के ऊपर अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे हैं। ये स्मार्टफोन के लिए बेहतर स्थिति संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं और उन क्षेत्रों में भूकंप की चेतावनी पहुंचाने में मदद करते हैं जहां नेटवर्क कमजोर है। जापान सरकार अधिक आत्मनिर्भर घरेलू जियो लोकेशन सिस्टम हासिल करने के लिए शुरू में कुल 7 मिचिबिकी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना चाहती थी, लेकिन पिछले वर्ष H-3 रॉकेट का प्रक्षेपण नाकाम रहा, जिससे मिचिबिकी संख्या 5 उपग्रह नष्ट हो गया। सरकार अब इस सिस्टम को 6 उपग्रहों से संचालित करना चाहती है, जो प्रारंभिक योजना से एक कम है। जापान ने इस वर्ष की पहली छमाही में रिकॉर्ड चालू खाता अधिशेष दर्ज किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अधिशेष लगभग 174.3 खरब येन यानी करीब 110 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। 1985 में तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध होने के बाद से पहली छमाही के लिए ये रिकॉर्ड स्तर है। इसका मुख्य कारण विदेशों में जापान की सहायक कंपनियों से लाभांश आय में वृद्धि और सेमीकंडक्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक हिस्से पुर्जों के निर्यात में बढ़ोतरी रही। चालू खाता देश के बाहर व्यापार और निवेश से होने वाली आय का एक प्रमुख मापक है। इस बीच जून में मासिक चालू खाते में 92.3 अरब येन यानी लगभग 58.3 करोड़ डॉलर का घाटा दर्ज किया गया, जो पिछले साल जनवरी के बाद से 17 महीनों में पहला घाटा है। इसका एक कारण जापान आने वाले यात्रियों की संख्या में कमी से यात्रा खाते के अधिशेष में गिरावट रही। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा,
5: इतादाकिमासु,
0: भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारुजी ने कहा,
6: निहोंशोकु वा केंको नी इन देसु यो,
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा,
2: कोरे नमा तमागो देसु का?
1: ये कच्चा अंडा है।
0: हारुजी ने जवाब दिया,
6: हाय,
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा,
2: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिए,
2: वताशी नमा तमागो वा तबेरारेमासेन,
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा,
4: सो,
0: अच्छा,
4: जा नात्तो मो दामे,
0: तो फिर नात्तो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया,
2: नात्तो दाइस्की देसु,

0: बहुत पसंद है।
1: ना तो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को ना तो बहुत पसंद है।
0: आज का मुख्य वाक्य है
2: नमातमागो वा तबेरारेमासें,
0: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
1: इस वाक्य में
3: नमातमागो
1: का अर्थ है कच्चा अंडा और
3: तबेरारेमासें
1: का मतलब है नहीं खा सकती।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है। जैसे इस वाक्य में आया है
3: थाबेरारेमासें,
0: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
1: ये क्रिया
3: थाबेरु
1: यानी खाना के सक्षम रूप,
3: थाबेरारेरु
1: यानी खा सकने से बना है।
3: थाबेरारेरु
1: का विनम्र नकारात्मक रूप है
3: थाबेरारेमासें।
1: अभी आप इसे एक शब्द की तरह याद कर लीजिए
3: थाबेरारेमासें।
0: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे ताबेरारेमासें। जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
3: ताबेरारेमासें।
1: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए
3: ताबेरारेमासें। नमा तमागो वा ताबेरारेमासें।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।
4: दोज़ो, ताकसान ताबेते कुदासाए।
5: सुमिमासें, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासें।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा
4: दोज़ो, ताकसान ताबेते कुदासाए।
0: लीजिए, भर पेट खाइएगा।
3: दोज़ो
1: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
3: ताकसान
1: का मतलब है बहुत सारा और
3: ताबेते कुदासाई
1: का अर्थ है खाइए। ये क्रिया
3: ताबेरु
1: के ते रूप के बाद
3: कुदासाई
1: जोड़कर बना है।
0: दूसरी महिला ने उत्तर दिया
5: सुमिमासें, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासें।
0: माफ कीजिए, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
3: सुमिमासें
1: का मतलब है माफ कीजिए,
3: वाताशी
1: का अर्थ है मैं और
3: साशिमी
1: है साशिमी यानी कच्ची मछली।
0: तो आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
3: साशिमी वा ताबेरारेमासें। वाताशी साशिमी वा ताबेरारेमासें। सुमिमासें, वाताशी साशिमी वा ताबेरारेमासें।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको झींगा मछली से एलर्जी है। झींगा मछली को जापानी भाषा में कहते हैं
3: एबी।
1: तो सुमिमासेन से शुरू करके अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए।
4: सुमिमासेन, वाताशी एबी वा ताबेरारेमासेन।
0: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते। सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं
3: बुतानिक।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: सुमिमासें, वाताशी बुतानिक वा ताबेरारेमासें।
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था। आप भी इसे याद कर लीजिए।
7: इतादाकिमास।
3: इतादाकिमास
0: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है। इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं
3: गुच्छोसमा देश्ता।
1: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
3: इतादाकिमास
1: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
3: गुच्छोसमा देश्ता।
0: तो सुनिए और दोहराइए
3: इतादाकिमास गुच्छोसमा देश्ता।
1: और दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: いただきます。
8: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ生卵ですか?
8: はい。すみません。私生卵は食べられません。
9: そう。じゃあ納豆もダメ?
2: 納豆大好きです。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें आज हम बताएंगे जापानी नाश्ते के बारे में।
1: जापानी नाश्ते की बात आते ही मन में छवि बनती है चावल की कटोरी, मिसो सूप और भुनी हुई मछली की। आज की बातचीत में भी ऐसा ही खाना था।
0: ये पारंपरिक जापानी नाश्ता है। इसमें नात्तो, समुद्री घास यानी नोरी, आलू बुखारे का अचार और अंडा भी हो सकते हैं।
1: इसके अलावा पश्चिमी शैली का नाश्ता भी आम है। उसमें ब्रेड, अंडे के व्यंजन और फलों का रस या कॉफी शामिल होते हैं।
0: जापानी सरायों में आमतौर पर जापानी शैली का नाश्ता मिलता है, लेकिन अधिकतर होटलों में आप चुन सकते हैं कि आपको जापानी शैली का नाश्ता चाहिए या पश्चिमी शैली का।
1: नाश्ते में बुफे भी आम हैं और उनमें दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। वहाँ आप अपनी पसंद की चीजें जितनी चाहें खा सकते हैं। मैं तो दोनों तरह के व्यंजन खाना पसंद करता हूँ।
0: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में ताम की तबीयत थोड़ी खराब रहेगी, तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 11 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। भीषण उष्णकटिबंधीय तूफान चानहुम अब जापान की ओर बढ़ रहा है और मंगलवार शाम को टोक्यो सहित कांतो क्षेत्र से टकरा सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने पूर्वी और पूर्वोत्तरी जापान में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। बुधवार सुबह तक के 24 घंटों में तोहोकु क्षेत्र में अधिकतम 180 मिलीमीटर, खांतो कोशिन क्षेत्र में 150 मिलीमीटर और प्रशांत महासागर स्थित इजू द्वीपों में 100 मिलीमीटर वर्षा होने का अनुमान है। इस तूफान के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। तोहोकु और कांतो कोशिन में मंगलवार को अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूस्खलनों, निचले इलाकों में बाढ़, नदियों में उफान, तेज हवाओं और ऊंची लहरों के प्रति चेतावनी जारी की है। एजेंसी के अनुसार बवंडर जैसी तेज हवाओं और वज्रपात की भी आशंका है। तूफान असामान्य मार्ग पर चलते हुए पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार तूफान की दिशा को देखें तो इससे खांतो और तोहोकू के तटों पर हवा की चाल असामान्य हो सकती है और अचानक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। जापान की ओर आने वाले तूफान आमतौर पर पश्चिमी हवाओं के दबाव में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए शक्तिशाली भूकंप को 2 सप्ताह बीत चुके हैं और वहां 6,000 से अधिक लोग अब भी आश्रय स्थलों में रह रहे हैं। 28 जुलाई को आए भूकंप से कुमामोतो के कुछ इलाकों में 7 की तीव्रता के झटके महसूस किए गए, जो जापान के भूकंप मापी पैमाने पर सर्वाधिक स्तर है। सोमवार तक भूकंप से 39 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी थी, जिनमें आपदा संबंधी कारणों से मारे गए लोग भी शामिल हैं। भूकंप से 22,000 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 699 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। यात्सुशिरो और उकी शहरों तथा हिकावा नगर में लगभग 34,000 घरों में जलापूर्ति अब तक ठप है। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बहाल हो जाएगी। एनएचके के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए के मंत्रिमंडल की समर्थन दर पिछले महीने की तुलना में 5 अंक गिरकर 53% हो गई है, जो पिछले साल गठन के बाद से सबसे कम है। वहीं असमर्थन दर 6 अंक बढ़कर 33% हो गई है। एनएचके ने शुक्रवार से रविवार तक टेलीफोन सर्वेक्षण किया। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के 2,925 लोगों से संपर्क किया गया, जिनमें से 1,205 ने जवाब दिया। सर्वेक्षण में 28 जुलाई को जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में आए महाभूकंप के बाद सरकारी कदमों के बारे में भी पूछा गया। 11% लोगों ने कहा कि वे सरकारी प्रतिक्रिया की बहुत सराहना करते हैं, जबकि 56% ने कहा कि वे कुछ हद तक सराहना करते हैं। 21% ने कहा कि वे प्रतिक्रिया की उतनी सराहना नहीं करते और 6% ने कहा कि वे बिल्कुल भी सराहना नहीं करते। मंत्रिमंडल ने हाल में एक सरकारी योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत अगले साल अप्रैल से 2 साल के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर की दर घटाकर 1% कर दी जाएगी। इसके अलावा निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को भत्ता भी मिलेगा, जिससे खाद्य पदार्थों पर उनके लिए कर का भार लगभग 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर 49% लोगों ने कहा कि वे इस नीति का समर्थन करते हैं, 39% ने कहा कि वे इसके खिलाफ हैं और 12% ने कहा कि वे नहीं बता सकते या उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। संसद ने शाही परिवार के सदस्यों की पर्याप्त संख्या बनाए रखने के लिए संशोधित शाही घराना कानून पारित कर दिया है। जब लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि संशोधन को जनता का समर्थन मिला है, तो 3% ने कहा कि इसे पर्याप्त समर्थन मिला है, जबकि 26% ने कहा कि कुछ हद तक मिला है। 41% ने कहा कि संशोधन को ज्यादा समर्थन नहीं मिला है और 23% ने कहा कि इसे
बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिला है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान में निर्मित जीपीएस उपग्रह मिचिबिकी को मंगलवार सुबह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर खागोशिमा के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से मिचिबिकी संख्या 7 उपग्रह ले जाने वाला H-3 रॉकेट जापानी समयानुसार सुबह करीब 4 बजे प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट ने ऊपर जाते हुए 2 बूस्टर और पहले चरण को अपने से अलग किया। प्रक्षेपण के लगभग 29 मिनट बाद रॉकेट ने उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। मिचिबिकी उपग्रह जीपीएस की तरह पोजीशनिंग सिग्नल भेजते हैं। मिचिबिकी के 5 उपग्रह वर्तमान में जापान के ऊपर अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे हैं। ये स्मार्टफोन के लिए बेहतर स्थिति संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं और उन क्षेत्रों में भूकंप की चेतावनी पहुंचाने में मदद करते हैं जहां नेटवर्क कमजोर है। जापान सरकार अधिक आत्मनिर्भर घरेलू जियो लोकेशन सिस्टम हासिल करने के लिए शुरू में कुल 7 मिचिबिकी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना चाहती थी, लेकिन पिछले वर्ष H-3 रॉकेट का प्रक्षेपण नाकाम रहा, जिससे मिचिबिकी संख्या 5 उपग्रह नष्ट हो गया। सरकार अब इस सिस्टम को 6 उपग्रहों से संचालित करना चाहती है, जो प्रारंभिक योजना से एक कम है। जापान ने इस वर्ष की पहली छमाही में रिकॉर्ड चालू खाता अधिशेष दर्ज किया है।

0: वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अधिशेष लगभग 174.3 खरब येन यानी करीब 110 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। 1985 में तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध होने के बाद से पहली छमाही के लिए ये रिकॉर्ड स्तर है। इसका मुख्य कारण विदेशों में जापान की सहायक कंपनियों से लाभांश आय में वृद्धि और सेमीकंडक्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक हिस्से पुर्जों के निर्यात में बढ़ोतरी रही। चालू खाता देश के बाहर व्यापार और निवेश से होने वाली आय का एक प्रमुख मापक है। इस बीच जून में मासिक चालू खाते में 92.3 अरब येन यानी लगभग 58.3 करोड़ डॉलर का घाटा दर्ज किया गया, जो पिछले साल जनवरी के बाद से 17 महीनों में पहला घाटा है। इसका एक कारण जापान आने वाले यात्रियों की संख्या में कमी से यात्रा खाते के अधिशेष में गिरावट रही।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारूजी ने कहा
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा
2: कोरे नमा तमागो देसु का?
1: ये कच्चा अंडा है।
0: हारूजी ने जवाब दिया
3: हाय।
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा
2: すみません.
1: माफ कीजिए।
2: 私生卵は食べられません.
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा
4: सो
0: अच्छा
4: जा नातो मो दामे?
0: तो फिर नातो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया
2: नातो दाइस्की देस।
1: नातो बहुत पसंद है।
0: नातो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को नातो बहुत पसंद है।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: नमातमागो वा तबेरारेमासेन,
1: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
0: इस वाक्य में
5: नमा तमागो
0: का अर्थ है कच्चा अंडा और
5: तबेरारेमासेन
0: का मतलब है नहीं खा सकती।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है। जैसे इस वाक्य में आया है
5: तबेरारेमासेन,
1: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
0: ये क्रिया
5: तबेरु
0: यानी खाना के सक्षम रूप,
5: तबेरारेरु
0: यानी खा सकने से बना है।
5: तबेरारेरु
0: का विनम्र नकारात्मक रूप है
5: तबेरारेमासेन।
0: अभी आप इसे एक शब्द की तरह याद कर लीजिए
5: तबेरारेमासेन।
1: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे तबेरारेमासेन। जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
5: तबेरारेमासेन।
0: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए
5: तबेरारेमासेन। नमा तमागो वा तबेरारेमासेन।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।
6: दोज़ो, ताकसान ताबेते कुदासाई।
2: सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा
6: दोज़ो, ताकसान ताबेते कुदासाई।
1: लीजिए, भरपेट खाइएगा।
5: दोज़ो
0: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
5: तकसंग
0: का मतलब है बहुत सारा और
5: 食べてください。
0: का अर्थ है खाइए। ये क्रिया
5: 食べる
0: के ते रूप के बाद
5: ください
0: जोड़कर बना है।
1: दूसरी महिला ने उत्तर दिया,
2: すみません、私刺身は食べられません。
1: माफ कीजिए, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
5: すみません
0: का मतलब है माफ कीजिए।
5: वाताशी
0: का अर्थ है मैं और
5: साशिमी
0: है साशिमी यानी कच्ची मछली।
1: तो आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
5: साशिमी वा तबेरारे मासें। वाताशी साशिमी वा तबेरारे मासें। すみません。私、刺身は食べられません。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको झींगा मछली से एलर्जी है। झींगा मछली को जापानी भाषा में कहते हैं
5: एबी।
0: तो सुमिमासेन से शुरू करके अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए।
2: すみません。私、エビは食べられません。
1: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते। सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं
5: ब्यूटानिकु।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: すみません。私、豚肉は食べられません。
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था। आप भी इसे याद कर लीजिए।
5: इतादाकिमास
1: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है। इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं
5: गुत्सोसमा देश्ता।
0: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
5: इतादाकिमास
0: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
5: गुच्छोसामा देश्टा।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
5: इतादाकिमास गुच्छोसामा देश्टा।
0: और दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: いただきます。
8: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें आज हम बताएंगे जापानी नाश्ते के बारे में।
0: जापानी नाश्ते की बात आते ही मन में छवि बनती है चावल की कटोरी, मिसो सूप और भुनी हुई मछली की। आज की बातचीत में भी ऐसा ही खाना था।
1: ये पारंपरिक जापानी नाश्ता है। इसमें नात्तो, समुद्री घास यानी नोरी, आलू बुखारे का अचार और अंडा भी हो सकते हैं।
0: इसके अलावा पश्चिमी शैली का नाश्ता भी आम है। उसमें ब्रेड, अंडे के व्यंजन और फलों का रस या कॉफी शामिल होते हैं।
1: जापानी सरायों में आमतौर पर जापानी शैली का नाश्ता मिलता है, लेकिन अधिकतर होटलों में आप चुन सकते हैं कि आपको जापानी शैली का नाश्ता चाहिए या पश्चिमी शैली का।
0: नाश्ते में बुफे भी आम हैं और उनमें दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। वहाँ आप अपनी पसंद की चीजें जितनी चाहें खा सकते हैं। मैं तो दोनों तरह के व्यंजन खाना पसंद करता हूँ।
1: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम की तबीयत थोड़ी खराब रहेगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 11 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। भीषण उष्णकटिबंधीय तूफान चानहुम अब जापान की ओर बढ़ रहा है और मंगलवार शाम को टोक्यो सहित खांतो क्षेत्र से टकरा सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने पूर्वी और पूर्वोत्तरी जापान में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। बुधवार सुबह तक के 24 घंटों में तोहोकू क्षेत्र में अधिकतम 180 मिलीमीटर, खांतो कोशिन क्षेत्र में 150 मिलीमीटर और प्रशांत महासागर स्थित इजू द्वीपों में 100 मिलीमीटर वर्षा होने का अनुमान है। इस तूफान के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। तोहोकू और खांतो कोशिन में मंगलवार को अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूस्खलनों, निचले इलाकों में बाढ़, नदियों में उफान, तेज हवाओं और ऊंची लहरों के प्रति चेतावनी जारी की है। एजेंसी के अनुसार बवंडर जैसी तेज हवाओं और वज्रपात की भी आशंका है। तूफान असामान्य मार्ग पर चलते हुए पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार तूफान की दिशा को देखें तो इससे खांतो और तोहोकू के तटों पर हवा की चाल असामान्य हो सकती है और अचानक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। जापान की ओर आने वाले तूफान आमतौर पर पश्चिमी हवाओं के दबाव में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए शक्तिशाली भूकंप को 2 सप्ताह बीत चुके हैं और वहां 6,000 से अधिक लोग अब भी आश्रय स्थलों में रह रहे हैं। 28 जुलाई को आए भूकंप से कुमामोतो के कुछ इलाकों में 7 की तीव्रता के झटके महसूस किए गए, जो जापान के भूकंप मापी पैमाने पर सर्वाधिक स्तर है। सोमवार तक भूकंप से 39 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी थी, जिनमें आपदा संबंधी कारणों से मारे गए लोग भी शामिल हैं। भूकंप से 22,000 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 699 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। यात्सुशिरो और उकी शहरों तथा हिकावा नगर में लगभग 34,000 घरों में जलापूर्ति अब तक ठप है। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बहाल हो जाएगी। एनएचके के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए के मंत्रिमंडल की समर्थन दर पिछले महीने की तुलना में 5 अंक गिरकर 53% हो गई है, जो पिछले साल गठन के बाद से सबसे कम है। वहीं असमर्थन दर 6 अंक बढ़कर 33% हो गई है। एनएचके ने शुक्रवार से रविवार तक टेलीफोन सर्वेक्षण किया। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के 2,925 लोगों से संपर्क किया गया, जिनमें से 1,205 ने जवाब दिया। सर्वेक्षण में 28 जुलाई को जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में आए महाभूकंप के बाद सरकारी कदमों के बारे में भी पूछा गया। 11% लोगों ने कहा कि वे सरकारी प्रतिक्रिया की बहुत सराहना करते हैं, जबकि 56% ने कहा कि वे कुछ हद तक सराहना करते हैं। 21% ने कहा कि वे प्रतिक्रिया की उतनी सराहना नहीं करते और 6% ने कहा कि वे बिल्कुल भी सराहना नहीं करते। मंत्रिमंडल ने हाल में एक सरकारी योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत अगले साल अप्रैल से 2 साल के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर की दर घटाकर 1% कर दी जाएगी। इसके अलावा निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को भत्ता भी मिलेगा, जिससे खाद्य पदार्थों पर उनके लिए कर का भार

हर लगभग शून्य हो जाएगा। कुल मिलाकर 49% लोगों ने कहा कि वे इस नीति का समर्थन करते हैं, 39% ने कहा कि वे इसके खिलाफ हैं और 12% ने कहा कि वे नहीं बता सकते या उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। संसद ने शाही परिवार के सदस्यों की पर्याप्त संख्या बनाए रखने के लिए संशोधित शाही घराना कानून पारित कर दिया है। जब लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि संशोधन को जनता का समर्थन मिला है, तो 3% ने कहा कि इसे पर्याप्त समर्थन मिला है, जबकि 26% ने कहा कि कुछ हद तक मिला है। 41% ने कहा कि संशोधन को ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है और 23% ने कहा कि इसे बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिला है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान में निर्मित जीपीएस उपग्रह मिचिबिकी को मंगलवार सुबह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर खागोशिमा के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से मिचिबिकी संख्या 7 उपग्रह ले जाने वाला H-3 रॉकेट जापानी समयानुसार सुबह करीब 4 बजे प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट ने ऊपर जाते हुए 2 बूस्टर और पहले चरण को अपने से अलग किया। प्रक्षेपण के लगभग 29 मिनट बाद रॉकेट ने उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। मिचिबिकी उपग्रह जीपीएस की तरह पोजीशनिंग सिग्नल भेजते हैं। मिचिबिकी के 5 उपग्रह वर्तमान में जापान के ऊपर अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे हैं। ये स्मार्टफोन के लिए बेहतर स्थिति संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं और उन क्षेत्रों में भूकंप की चेतावनी पहुंचाने में मदद करते हैं जहां नेटवर्क कमजोर है। जापान सरकार अधिक आत्मनिर्भर घरेलू जियो लोकेशन सिस्टम हासिल करने के लिए शुरू में कुल 7 मिचिबिकी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना चाहती थी, लेकिन पिछले वर्ष H-3 रॉकेट का प्रक्षेपण नाकाम रहा, जिससे मिचिबिकी संख्या 5 उपग्रह नष्ट हो गया। सरकार अब इस सिस्टम को 6 उपग्रहों से संचालित करना चाहती है, जो प्रारंभिक योजना से 1 कम है। जापान ने इस वर्ष की पहली छमाही में रिकॉर्ड चालू खाता अधिशेष दर्ज किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अधिशेष लगभग 174.3 खरब येन यानी करीब 110 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। 1985 में तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध होने के बाद से पहली छमाही के लिए ये रिकॉर्ड स्तर है। इसका मुख्य कारण विदेशों में जापान की सहायक कंपनियों से लाभांश आय में वृद्धि और सेमीकंडक्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक हिस्से पुर्जों के निर्यात में बढ़ोतरी रही। चालू खाता देश के बाहर व्यापार और निवेश से होने वाली आय का एक प्रमुख मापक है। इस बीच जून में मासिक चालू खाते में 92.3 अरब येन यानी लगभग 58.3 करोड़ डॉलर का घाटा दर्ज किया गया, जो पिछले साल जनवरी के बाद से 17 महीनों में पहला घाटा है। इसका एक कारण जापान आने वाले यात्रियों की संख्या में कमी से यात्रा खाते के अधिशेष में गिरावट रही। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको

0: क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा,
5: इतादाकिमासु,
0: भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारुजी ने कहा,
6: निहोंशोकु वा केंको नी इन देसु यो,
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा,
2: कोरे नमा तमागो देसु का?
1: ये कच्चा अंडा है।
0: हारुजी ने जवाब दिया,
6: हाय,
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा,
2: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिए,
2: वतशी नमा तमागो वा तबे रारेमासेन,
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा,
4: सो,
0: अच्छा,
4: जा नात्तो मो दामे,
0: तो फिर नात्तो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया,
2: नात्तो दाइस्की देस,
1: नात्तो बहुत पसंद है।
0: नात्तो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को नात्तो बहुत पसंद है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: नमा तमागो वा तबे रारेमासेन,
1: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
0: इस वाक्य में
7: नमा तमागो
0: का अर्थ है कच्चा अंडा और
7: तबे रारेमासेन
0: का मतलब है नहीं खा सकती।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है। जैसे इस वाक्य में आया है
7: थबे रारेमासेन,
1: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
0: ये क्रिया
7: थबेरु
0: यानी खाना के सक्षम रूप,
7: थबे रारेरु
0: यानी खा सकने से बना है।
7: थबे रारेरु
0: का विनम्र नकारात्मक रूप है
7: थबे रारेमासेन।
0: अभी आप इसे एक शब्द की तरह याद कर लीजिए,
7: थबे रारेमासेन।
1: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे थबे रारेमासेन। जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
7: थबे रारेमासेन।
0: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए,
7: थबे रारेमासेन। नमा तमागो वा थबे रारेमासेन।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।
8: दोज़ो, ताकसान तबेते कुदासाई।
2: सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा तबे रारेमासेन।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
8: दोज़ो, ताकसान तबेते कुदासाई।
1: लीजिए, भरपेट खाइएगा।
7: दोज़ो
0: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
7: तकसं
0: का मतलब है बहुत सारा और
7: तबेते कुदासाई
0: का अर्थ है खाइए। ये क्रिया
7: तबेरु
0: के ते रूप के बाद
7: कुदासाई
0: जोड़कर बना है।
1: दूसरी महिला ने उत्तर दिया,
2: सुमिमासेन, वताशी
3: 刺身は食べられません。
9: माफ कीजिए, मैं साशिमी नहीं खा सकती.
7: すみません
0: का मतलब है माफ कीजिए.
7: वाताशी
0: का अर्थ है मैं और
7: साशिमी
0: है साशिमी यानी कच्ची मछली.
9: तो आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए.
7: साशिमी वा तबेरारेमासेन. वाताशी साशिमी वा तबेरारेमासेन. すみません。私、刺身は食べられません。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए. मान लीजिए आपको झींगा मछली से एलर्जी है. झींगा मछली को जापानी भाषा में कहते हैं
7: एबी.
0: तो सुमिमासेन से शुरू करके अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए.
3: すみません。私、エビは食べられません。
9: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते. सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं
7: ब्यूटानिकु.
9: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए.
10: すみません。私、ब्यूटानिकु は食べられません。
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था. आप भी इसे याद कर लीजिए.
5: इतादाकिमास.
7: इतादाकिमास
9: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है. इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं. खाना खाने के बाद कहते हैं
7: गुत्सोसमा देश्ता.
0: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
7: इतादाकिमास
0: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
7: गुचसोसामा देश्ता.
9: तो सुनिए और दोहराइए.
7: इतादाकिमास गुचसोसामा देश्ता.
0: और दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं.
5: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ生卵ですか？
6: はい。
2: すみません。私生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆大好きです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
9: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें आज हम बताएंगे जापानी नाश्ते के बारे में.
0: जापानी नाश्ते की बात आते ही मन में छवि बनती है चावल की कटोरी, मिसो सूप और भुनी हुई मछली की. आज की बातचीत में भी ऐसा ही खाना था.
9: ये पारंपरिक जापानी नाश्ता है. इसमें नात्तो, समुद्री घास यानी नोरी, आलू बुखारे का अचार और अंडा भी हो सकते हैं.
0: इसके अलावा पश्चिमी शैली का नाश्ता भी आम है. उसमें ब्रेड, अंडे के व्यंजन और फलों का रस या कॉफी शामिल होते हैं.
9: जापानी सरायों में आमतौर पर जापानी शैली का नाश्ता मिलता है, लेकिन अधिकतर होटलों में आप चुन सकते हैं कि आपको जापानी शैली का नाश्ता चाहिए या पश्चिमी शैली का.
0: नाश्ते में बुफे भी आम हैं और उनमें दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं. वहाँ आप अपनी पसंद की चीजें जितनी चाहें खा सकते हैं. मैं तो दोनों तरह के व्यंजन खाना पसंद करता हूँ.
9: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा.
0: अगले पाठ में ताम की तबीयत थोड़ी खराब रहेगी. तब तक के लिए सायोनारा.

0: じゃあ納豆もダメ？
1: 納豆大好きです。
2: अब हम इस मकान में की वजाहत करते हैं।
3: खाने की मेज पर रिवायती जापानी नाश्ता सजा हुआ है, जिसमें उबले हुए चावल, मिसो सूप और भुनी हुई मछली वगैरह हैं। काइतो और ताम जापान में खाना शुरू करते वक्त के रिवायती रस्मी अल्फाज कहते हैं।
4: इतादाकिमास।
2: खाना शुरू करते हैं।
3: खाने की मेज पर मौजूद रोबोट मालिका मकान हारुसान कहती हैं,
5: निहोन शोकु वा केंको नी इन देसु यो।
2: जापानी खाने सेहत के लिए अच्छे हैं।
3: ताम हारुसान से पूछती है,
6: कोरे नमा तमागो देसु का?
2: ये कच्चा अंडा है।
3: हारुसान जवाब देती हैं,
5: हाय।
2: हाँ।
3: ताम माजरत करते हुए कहती है,
6: सुमिमासेन।
2: माजरत चाहती हूँ।
6: वताशी नमा तमागो वा तबेरारेमासेन।
2: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
3: काइतो कहता है,
0: सो
2: अच्छा,
0: जा नत्तो मो दमे?
2: तो फिर नत्तो भी नहीं खा सकती होंगी।
3: ताम खुशी से भरपूर लहजे में जवाब देती है,
6: नत्तो दाइस्की देस।
2: नत्तो मुझे बहुत पसंद है।
3: नत्तो खमीर लगे सोयाबीन से तैयार किया जाता है। आमतौर पर जायके के लिए इसमें सोया सॉस डाला जाता है। नत्तो को उबले हुए चावलों पर डालकर खाना आम तरीका है। ताहम नत्तो लेसदार और मुनफरिद बू का हामिल होता है, इसलिए हर शख्स इसे पसंद नहीं करता।
2: जी हाँ, मुझ समेत बहुत से लोग इससे दूर भागते हैं।
3: आज के सबक का कलीदी जुमला है, कच्चा अंडा नहीं खा सकती। अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए ना खाई जा सकने वाली चीजों के बारे में बता सकते हैं।
2: नामा तमागो यानी कच्चा अंडा, और ताबेरारे मासेन के मायने हैं नहीं खा सकता या नहीं खा सकती। आज का नुक्ता कोई काम ना कर सकने के बारे में बताने से मुतालिक है, जैसा कि कलीदी जुमले का लफ्ज ताबेरारे मासेन यानी नहीं खा सकता। फेल ताबेरु यानी खाना की सकना शक्ल है ताबेरारेरु यानी खा सकना। ताबेरारेरु की शाइस्ता मनफी शक्ल है ताबेरारे मासेन। इस कारामद लफ्ज ताबेरारे मासेन को इसी तरह याद कर लेना बेहतर होगा।
3: ठीक है, मैं नहीं खा सकती के लिए मैं कहूँगी ताबेरारे मासेन।
2: जी बिल्कुल ठीक। कोई खास चीज़ ना खा सकने के बारे में बताने के लिए उस चीज़ के नाम के बाद वा लगाकर उसके बाद कहेंगे ताबेरारे मासेन।
3: तो सामईन अब सुनिए और दोहराइए।
7: ताबेरारे मासेन। नमा तमागो वा ताबेरारे मासेन। नमा तमागो वा ताबेरारे मासेन।
3: जी सामईन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
2: अब एक मकालमा सुनिए जिसमें खातून किसी जापानी खाने के बारे में कह रही है कि वो ये नहीं खा सकती।
8: दोज़ो ताकसान ताबेते कुदासाए।
6: सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
2: अब इस मकालमे की तशरी।
8: दोज़ो ताकसान ताबेते कुदासाए।
3: जी भर कर खाइए।
2: दोज़ो ये कोई चीज पेश करते वक्त कहा जाने वाला लफ्ज है। इसका तर्जुमा लीजिए किया जा सकता है। ताकसान के मायने हैं बहुत, और ताबेते कुदासाई यानी खाइए, ये फेल ताबेरु यानी खाना की ते शक्ल के साथ कुदासाई लगाकर बनाया गया है।
6: सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
3: माजरत चाहती हूँ, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
2: सुमिमासेन माजरत के लिए इस्तेमाल होता है। वाताशी यानी मैं और साशिमी कच्ची मछली की डिश को कहते हैं। ताबेरारे मासेन तो आपको याद ही होगा यानी नहीं खा सकती।
3: तो अब सुनिए और दोहराइए।
7: साशिमी वा ताबेरारे मासेन। वाताशी साशिमी वा ताबेरारे मासेन। सुमिमासेन, वाताशी साशिमी वा ताबेरारे मासेन।
2: अब ना खा सकने वाली कुछ और चीजों के साथ मशक करते हैं। मसलन आप झींगा नहीं खा सकते, तो ये बात किस तरह कहेंगे? झींगे की जापानी है
7: एबी। एबी।
2: सुमिमासेन के साथ कहने की कोशिश करें।
8: सुमिमासेन, वाताशी एबी वा ताबेरारेमासेन। सुमिमासेन, वाताशी एबी वा ताबेरारेमासेन।
2: अब यही जुमला खिंजीर के गोश्त के बारे में कहने की मशक करें। खिंजीर के गोश्त की जापानी है
7: बुतानिकु। बुतानिकु।
9: सुमिमासेन, वाताशी बुतानिकु वा ताबेरारेमासेन।